जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

बोल राधा बोल संगम को भाते नहीं, हर बोल राधा बोल संगम को भाते नहीं।